0: releases across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chhappan and Welcome.
1: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।

बज गए हैं पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। 550,000 बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी देश के प्रत्येक जिले में पहुंची। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच नेशनल हाईवे 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष सेवाओं के कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। ये क्षेत्र अनुमानित 17,60,000 आजीविकाओं को सहयोग दे रहा है। वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में गोवा में निधन। दिवंगत अभिनेता का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के दो फेरे चलाएगा। और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये 30 घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नवास्पर्शम दीपतम टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के पुराने सैनिक होने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के इतने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक दिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहां पर सिर्फ केवल 4 वापिती

0: जहाजों से बनी थी, जो
1: अच्छा
0: छोटे से दो बाइप्लेन होते थे,
1: जी
0: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब
1: बिल्कुल
0: उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया,
1: जी
0: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
1: बिल्कुल
0: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी,
1: जी
0: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे भारतीय वायुसेना अपने देश की सीमाओं, वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए। और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम
1: जी
0: आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है।
1: बिल्कुल
0: आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी,
1: जी
0: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई, और थीम दिया गया था स्पेशल, जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक। और
1: जी
0: ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई, दुनिया की
1: बिल्कुल
0: कोई
1: कोई
0: जो
1: ताकत
0: डिफेंस नहीं रोक पाई।
1: जी जी
0: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि
1: सटीक
0: कैसे हमने छोटी सी जगह पर
1: बिल्कुल
0: जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो
1: जी
0: भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है
1: जी
0: ये इंडिकेट करता है कि हम सीरियस हैं। और मैं ऑल भारतीय वायुसेना के जो हमारे एक ही जो परमवीर चक्र विजेता है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, उनको
1: जी
0: श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि उनके जैसे कई लोगों के शौर्य की वजह से हमारा
1: जी
0: भारत सुरक्षित है
1: बेशक
0: और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत सर कीमती और बहुत ही खूबसूरत बात कही, और जाहिर है देशभक्ति की जो भावना है वो हर देशवासी में है। और जिस तरीके से आपने कहा कि वर्दी आपने भले ही छोड़ दी या रिटायर हो गए आप, लेकिन उसके बावजूद जो देशभक्ति की भावना है और जो अपनी एयरफोर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एकदम अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आज का डेडिकेटेड है एयरफोर्स डे स्पेशल है आज का, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। तो देशभक्ति की भावना हर देशवासी में मौजूद है। हम आते हैं लौटकर, आप हमें मैसेज करें 9868107070 हमारा है नंबर।

0: संदेश टू सोल्जर्स का आज का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर. आज है एयरफोर्स डे और एयरफोर्स डे स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल शो में. सर हमारे पास ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का मैसेज है. हम चाहेंगे कि हम सब हमारे लिसनर्स को भी उनका ये मैसेज सुनाया जाए.
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश.
3: नमस्कार. भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ. वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है. सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है. आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है. हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं. इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है. देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है. लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है. चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है. हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है. नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है. आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है. आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे

0: Witness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. Is avsar par main apne aadarniya air veterans ko naman karta hu. Aapki durdrishti, samarpan aur margdarshi netritv ne hi is sashakt bhartiya vayusena ki neev rakhi hai jo aaj rashtra ki suraksha ke liye puri dhridhta ke sath khadi hai. Sath hi main amar shahidon ko apni shraddhanjali arpit karta hu jinhone kartavya ke marg par apni pranon ki aahuti dekar tirange ka maan rakha. I also take this opportunity to acknowledge that through every challenge, the unwavering support and encouragement of our fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein hum samast vayu yodha, Bhartiya Vayu Sena, achook, abhed evam sateek ki avdharna ka smaran karte hue yah sankalp lete hain ki rashtra ki raksha, uski samprabhuta aur akhandata ke liye hum sadaiv samarpit rahenge tatha apne adarsh vakya nabha prasham deeptam par adig rahenge. Jai Hind.
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force,
2: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आज का हमारा स्पेशल शो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकार इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर, बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आप आज के स्पेशल शो में. और सर, इंडियन एयरफोर्स का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक कोई स्पेशल सॉन्ग भी है
3: जी,
2: तो वो क्या कुछ जोश से भर देता है आपको, पुराने दिनों की याद दिलाता है?
3: भारतीय वायुसेना का एक अपना सॉन्ग है जिसे वायुसेना सॉन्ग कहते हैं
2: जी,
3: और
2: जी,
3: मैं
2: जी.
3: सुनना चाहूंगा क्योंकि ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है.
2: बिल्कुल,
3: यदि आप सुना पाए तो बहुत
2: बिल्कुल सर, जरूर. और हम यहाँ पर एयरफोर्स डे का ये गाना हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं सर आपको भी.

0: तक के लिए तैयार हैं। उन्होंने जॉइंट प्लानिंग की बात की कि भारतीय वायुसेना हमेशा से ही जॉइंट प्लानिंग के लिए हमेशा तत्पर रही है, और हमने ऑप सिंदूर में दिखाया कैसे जॉइंट प्लानिंग की वजह से हम दुश्मन के हर मंसूबे को धराशायी कर पाए। उन्होंने लीडरशिप की बात की, एक लीडर है जो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस को भी अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करता है।
1: जी।
0: उन्होंने एक दो बात कही कि देश की सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने याद कराया भारतीय वायु सैनिकों को कि ये कभी ना भूलें, और उन्होंने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है। कैसे एक आम आदमी भारतीय वायुसेना की ताकत है, उन्होंने एक्सप्रेस किया। और एक जो इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता। जब वो बात कर रहे थे एएलएच, अंकुर, ट्रेनर, एलसीए, इन सब के पीछे मैं कुछ बहुत ही कुछ लोगों की बात बताना चाहूंगा जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए कब से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप इनमें एक हैं डॉक्टर एस आर विल्लूरी, जो अमेरिका में अपना जॉब छोड़ के भारत में, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत में आए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसी के पहले डायरेक्टर बने, और उन्होंने कई शुरुआत दी अपनी भारत में एयरक्राफ्ट डिजाइन को।
1: अच्छा।
0: शुरुआत में फिर थे एक डॉक्टर वी एम घाटगे। आप देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और चार साल में उन्होंने भारत का पहला ट्रेनर बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर 2। चार साल में कोई गुलाम देश अपना खुद जहाज ट्रेनर बनाए
1: जी।
0: और जबकि वो उसके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत ही हमारे जो है भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे हमारे एक एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह है जिनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा
1: जी।
0: और कुछ एक रुस्तम भी दमानिया है जिनके नाम पे हमारे रुस्तम ड्रोन है। हमारे कुछ टेस्ट पायलट्स हैं जैसे सुरंजन दास, विंग कमांडर अशोक और बहुत सारे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। और अगर मैं अब के जमाने की बात करूं तो आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
1: जी,
0: उसके जो जनक मैं कहना चाहूंगा वो है डॉक्टर कोटा हरि नारायण। वो अभी जीवित हैं और इतनी उम्र में अभी भी उतने ही जोश से भारत की सेवा में लगे हुए हैं।
1: बहुत खूब सर।
0: तो बहुत हमारे भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए जो वीर हैं
1: जी,
0: जो
1: भारत ने
0: कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है
1: जी,
0: शायद वो भी एक ऐसे हैं जिनको हमें इस दिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और फ्यूचर आत्मनिर्भरता का है, फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी पर ले जाने का है, तो हमारे साइंटिस्ट का है, हमारे इंजीनियर्स का है, हमारे इनोवेटर्स का है, हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है और हमारी भारतीय इंडस्ट्री का है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाए कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा ना कर पाएं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना पाएं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना पाएं।
1: सर जैसे आपने बताया, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत में इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रीवियसली जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से कितने लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। सर और क्या पर्सनैलिटीज हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे और इंडियन एयरफोर्स का उस आत्मनिर्भर भारत में भी जो योगदान रहा वो भी बताइए।
0: देखिए भारतीय वायुसेना ने अगर आप देखें जो पहला जो एक दो टू सीट एयरक्राफ्ट बनाया था वो था 1958 में जिसको कानपुर वन कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये एचएल ने नहीं बनाया था।
1: ठीक है।
0: ये भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने कानपुर में बनाया इसलिए इसका नाम कानपुर वन बना।
1: ओके।
0: फिर इन्होंने फोर सीटर बनाया जिसका नाम था कानपुर टू। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला
1: जी,
0: लेकिन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल थे
1: जी, बिल्कुल बना पाए वो।
0: हाँ। और मैं एक और बताना चाहूंगा कि एक एवरो जहाज था जिसकी हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया 1959-1960 के बाद।
1: ओके।
0: और उस वक्त जो था हमने पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई और दो साल में उसको हमने पहला जहाज भारत में बनाया। ये जो इनिशिएटिव था
1: जी,
0: ये एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो उस वक्त इंचार्ज थे मेंटेनेंस कमांड के, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनाया कानपुर में।

0: सर कैसा महसूस कर रहे हैं ये सॉन्ग सुन करके?
1: मुझे लग रहा है कि ये भारतीय वायु सैनिकों को
0: जी
1: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका जो कमिटमेंट है भारत के प्रति,
0: जी
1: उसकी याद दिलाता है, उसको सेलिब्रेट करता है और बताता है कि कैसे भारतीय वायु सैनिक किसी भी स्थिति के लिए भारत के साथ खड़ा है, भारत के नागरिकों के साथ खड़ा है, भारत की सुरक्षा में खड़ा है और इस देश को किसी की नजर ना लगे उसे बचाने के लिए तैयार खड़ा है।
0: बिल्कुल
1: ये
0: सर,
1: भारतीय वायुसेना की अंदर से आई हुई आवाज है जो शायद ये कुछ शब्द कहते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा,
0: जी
1: अभी आज जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, क्योंकि वो हमारे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ बात कही कि हमारी वायुसेना ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक सिस्टम्स के लिए तैयार है,
0: बिल्कुल
1: जमीन से लेके स्पेस

0: जो उस वक्त के भारतीय वायुसेना चीफ सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। और फिर हमने वो जो बाद में जो फाइटर बनाने के काम आया
1: जी
0: और एयरक्राफ्ट हमने बनाए, तो भारतीय वायुसेना ने आपकी आत्मनिर्भरता में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं रीसेंट इनिशिएटिव देखूं
1: जी
0: तो 8 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मेहर बाबा यूएस सॉम कॉम्पिटिशन। यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम, या जिसको आजकल हम
1: जी
0: ड्रोन भी
1: ड्रोन
0: कहते
1: कहते
0: रहते
1: हैं।
0: हैं,
1: जी जी जी
0: सॉम की तरह कैसे हम अपनी देश की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर पाए या
1: जी
0: अपने देश की सुरक्षा में उसको इस्तेमाल कर पाए, ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो भारतीय वायुसेना बहुत कुछ करती आई है
1: बिल्कुल।
0: और फ्यूचर में हमें बहुत स्कोप है आगे करने का।
1: और सर ये भी जैसे आपने बताया कि हमारा जो आजाद भारत का पहला जहाज, जैसे कि आपने बताया बताया
0: HD2
1: जी
0: 1991 में,
1: 1991
0: 91 में,
1: बनाया, और
0: चार साल
1: हमारा
0: बाद,
1: 4 साल बाद
0: जी
1: 1951 में।
0: उन्नीस सौ
1: जी
0: इक्यावन में सॉरी उन्नीस सौ
1: जी
0: इक्यावन
1: जी
0: 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और
1: जी
0: चार
1: और
0: साल
1: चार साल
0: में
1: के अंदर अंदर
0: हमने
1: हमने
0: एक टू
1: अपना पहला
0: सीटर
1: जहाज बना
0: ट्रेनर
1: लिया,
0: बना लिया।
1: ट्रेनर बना
0: और ये
1: लिया।
0: बहुत सालों तक हम भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। मैंने
1: बिल्कुल,
0: इसको उड़ते हुए देखा 1990 के करीब,
1: तब तक उड़ता
0: तब
1: था
0: तक
1: ये,
0: उड़ रहा था।
1: बहुत बड़ी
0: उन्नीस सौ
1: बात है,
0: पचास इतने साल इसने
1: इतने
0: भारत की
1: साल भी
0: सेवा की,
1: सेवा की। और
0: तो बहुत हमारे केपेबल्स हैं, हमारे
1: जी जी
0: इंजीनियर्स रहे
1: सर,
0: हैं।
1: यही इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, जो एयरफोर्स का पहला जहाज वो कब बना?
0: एयरफोर्स का बना जो जो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया था वो था
1: जी
0: कानपुर वन, जैसे मैंने बोला
1: ठीक है
0: 1958 में।
1: जी
0: और हालांकि बाद में हमारा रोल उस तरीके से नहीं था,
1: जी
0: लेकिन एयरफोर्स एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। टेक्नोलॉजी में, एविएशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे जो ब्रिटेन और या अमेरिका के पुराने जहाज थे
1: जी
0: उनको कबाड़ खाने से ला के उसको ऑपरेशनल बनाया।
1: ओके
0: और उस वक्त जो था, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जो थे फ्रंट एंड पे नहीं थे, हमारे इंजीनियर्स एक मेंटेनेंस और उन कामों में थे,
1: अच्छा
0: तो उस समय में एयरक्राफ्ट को साल्वेज यार्ड से निकाल के उसको फ्लाइंग ऑपरेशनल बनाना,
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल,
0: इनफैक्ट
1: बहुत बड़ा
0: अगर
1: काम था ये।
0: अगर आप हरजिंदर सिंह जी की स्टोरी सुने
1: जी
0: तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट लाइसेंस लिया
1: अच्छा,
0: उस वक्त। तो वो डिजाइन भी करते थे और उसको
1: पायलट
0: उड़ाते भी
1: उड़ाते
0: थे,
1: भी थे।
0: मतलब नॉट हार्ड टेस्टिंग जहाज, लेकिन वो पायलट थे तो उन्हें डिजाइन और मेंटेनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही अगर आप रुस्तम भी दमानिया का समय पढ़ें, जो एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इंजीनियर थे,
1: जी
0: साइंटिस्ट थे, वो भी पायलट थे। वो अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग लेके आए और भारत में आके जब जहाज उड़ते थे तो वो डिजाइन के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को बताते थे कि ये जहाज कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे भारतीय पायलट्स की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत एक रिच हिस्ट्री रही है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ वॉर फाइटिंग में नहीं बल्कि अपने देश को सशक्त बनाने
1: सशक्त
0: में,
1: बनाने में,
0: एरोनॉटिक्स
1: बिल्कुल।
0: कैपेबिलिटी बनाने में,
1: और वो मेड इन इंडिया,
0: मेड इन
1: अपने ही
0: इंडिया,
1: लोगों ने बनाया
0: मेरे
1: वो,
0: मेड इन इंडिया में। अगर आप
1: बिल्कुल।
0: सुरंजन दास की बात करें तो जब हम अपना फर्स्ट फाइटर एयर का बना रहे थे
1: जी
0: तो वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट बीच में चले गए तो
1: अच्छा
0: सुरंजन दास ने उनका काम टेक ओवर किया। तो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने डिजाइन को अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको
1: अच्छा
0: अगले लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया।
1: सर, जिस तरीके से आपसे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही हैं, और जैसे आपने बताया कि पहला एयरक्राफ्ट हमारा कब बन गया था, ये हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है, गर्व की बात है, और ये नॉलेज में हमारी एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। सर यहाँ पर मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपसे बहुत सारी बातें करूं, लेकिन इससे पहले कुछ मैसेजेस जो आ चुके हैं मैं उनको जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। हितेंद्र दास का असम से है मैसेज, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सर आपको। और उसके बाद ये मैसेज है, शाही सर जी और ग्रुप कैप्टन राजीव सर, आपको मेरा सलाम, आज रेडियो पर आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत गर्व हो रहा है, आज आप हो तभी हम चैन से रह सकते हैं, जय हिंद जय भारत। ये है सर चंपावत टनकपुर उत्तराखंड ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 अनिल कुमार का सर ये मैसेज आपके लिए।
0: देखिए, हम हमारे चीफ ने बोला है कि नागरिकों का सहयोग
1: जी
0: हमारी ताकत है, तो आप
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: सर,
0: ताकत हैं। हमारे जो अभी करंट जनरेशन के योद्धा हैं, वायु योद्धा हैं, तो आप उनकी ताकत हैं। आप ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: उनका सहयोग देते रहें, अश्योर्ड रहिए कि वो आपकी वायु की पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और हमें
1: बिल्कुल
0: भी उन पर गर्व है।
1: बिल्कुल। और यह है सर यशवंत आठमुठे।

0: शिव महाराष्ट्र से। नमस्कार, जय हिंद सर, जय भारत कह रहे हैं आपसे। और ये मैसेज है मंसूर अली खान, आप सबको नमस्कार, वायुसेना को सलाम कर रहे हैं सर। और ये एक बहुत बड़ी कविता लिखकर भेजी है, ये बहुत बड़ी कविता है यश शिंदे की मुंबई से। और मुझे लगता है कि परिंदों से कह दो कि हम अपनी उड़ान और ऊंची कर लें, क्योंकि आसमान में अब बाजों का पहरा है। ये भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही हैं, इनका हौसला समंदर से भी गहरा है। जिनकी हुकूमत से कांपता नीले अंबर का सीना है, देश के उन रखवालों का शान से ही तो जीना है, जिन्होंने सीखा सिर्फ वतन के लिए मरना और जीना है। नीले गगन की ओट में रहकर जो फर्ज निभाते हैं, वो तूफानों के रुख को भी मोड़ कर आते हैं। भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों को सलाम जो आसमान में भारत का मान बढ़ाते हैं। वायुसेना के शेरों को शत शत नमन। हमारा वायुसेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सर आपके लिए। ये यश शिंदे मुंबई से मैसेज कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर, ये आई एम प्राउड ऑफ ऑल यू सर, लव लाइफ IAF, जय हिंद दीपांशु भटिंडा से। एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, जय हिंद दीपांशु का सर ये मैसेज है। और ये मैसेज है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल, महाराष्ट्र डहाणू वार्ड 1 से, जय हिंद सर जी, आपको ये कह रहे हैं। और ये है सर, जय हिंद टू टुडेज रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड गुड आफ्टरनून आरजे सर, थैंक यू, माय हार्डेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल आवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर दी सेल्फलेस सर्विस एंड इंडियन एयरफोर्स टूवर्ड्स द नेशन। आई बो माय हैट टू देम, माय सेल्फ शंकर लोध फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 सर दिल्ली से कर रहे हैं मैसेज। भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। और ये सारे मैसेज लगातार हमारे पास सर आ रहे हैं, हम बीच बीच में कोशिश करेंगे इनको लेने की। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऊंचाई पर जाना और फिर नीचे आना। तो उन उतार चढ़ाव में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद तो आता हो, लेकिन आपको डराता भी हो, आप सिहर भी जाते हो, कुछ ऐसा?
1: नहीं, देखिए, मेरे एक सीनियर कहते थे कि
0: जी
1: डर लगता है। मैंने कहा यस सर। कहते फिर तुम जियोगे।
0: अरे वाह,
1: डरना चाहिए, लेकिन उस डर को ओवरकम करना भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप डर को नहीं ओवरकम कर पाते तो हम उड़ नहीं पाते। अगर
0: यानी कि डर
1: हम,
0: भी जरूरी है।
1: हाँ, क्योंकि वो सैनिटी रखता है आपको
0: जी
1: सोचने की, ठीक दिशा, ठीक डिसीजन लेने की एक ज्ञान देता है आपको, बार बार याद कराता है कि किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना।
0: एग्जैक्टली,
1: तो मुझे लगता
0: बहुत
1: है
0: सही
1: कि
0: बात।
1: बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, हम जहां पर ऐसी सिचुएशंस में थे कि लगता नहीं था कि निकल पाएंगे,
0: जी
1: लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कूल रखना और ठीक डिसीजन लेना, अपनी टीम, देखिए भारतीय वायुसेना में मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूं, दो
0: जी
1: पायलट होते थे
0: जी
1: हमारे, टेक्नीशियंस होते थे, तो एक टीम थी हमारा। मैं तो कहता हूं जो हमारा एनसी जो सुबह खाना लाता था या पानी
0: जी
1: लाता था,
0: बिल्कुल
1: वो भी हमारी टीम का मेंबर
0: मेंबर
1: था।
0: है, बिल्कुल
1: और हमारी वाइफ जो सुबह पता नहीं 4 बजे बेचारे उठती थी या कब उठती
0: जी
1: थी, हमारे पूरे जो वायुसेना की टीम थी,
0: जी
1: उनकी फैमिली, उनके जो कमिटमेंट, उनके जो
0: बिल्कुल
1: सेक्रीफाइस हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। हमारा दिल करता था कई बार कि हम घर जाएं, लेकिन नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो अपनी देश की ड्यूटी से बड़ी नहीं थी।
0: नहीं थी, बेशक सर। यही डेडिकेशन जो हम देखते हैं अपने आर्म फोर्सेस के, हमारे सोल्जर्स में, हमारे सिपाही, हमारे सैनिकों में, वो जज्बा, वो देशभक्ति से, मतलब देशवासियों को भी पूरा देशभक्ति से भर देता है वो। सर एक इंसिडेंट है आपका, मैं
1: जी
0: आपसे उस पर पूछना चाहूंगा। अगस्त 1998,
1: जी
0: 18,000 फीट की ऊंचाई
1: जी
0: पर आप फ्लाई कर रहे हैं
1: जी जी
0: सर, ऐसा क्या हुआ कि उस दिन जिंदगी बदल गई और आज आप हमारे सामने बैठे हैं?
1: जी वो एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत अच्छा सा मौसम था
0: जी
1: और हम नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्थ सेक्टर में था,
0: जी
1: ग्लेशियर मतलब ले सेक्टर में अगर आप बोलिए, और हम जो है सब सेक्टर नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी में गए थे।
0: अच्छा
1: वहां पर हमने अपना जो भी अपना ऑपरेशन था किया,
0: जी
1: वापिस आ रहे थे और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइंग ऑफिसर नितिन वेल्डे, हम दोनों फ्लाइंग करके अपना ऑपरेशन करके वापिस आ रहे थे। हमारे साथ एक पैसेंजर भी थे और जब हम वापिस आ रहे थे तो एक प्लेस है सासेरला,
0: ओके
1: सासेरला मतलब पास कहते हैं, तो उसको हम
0: ओके
1: जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे इंजन फेलियर हो गया।
0: ओ
1: और देखिए हेलीकॉप्टर में जब इंजन फेल होता है तो ये
0: जी
1: ग्लाइड नहीं करता, नीचे जाता बहुत तेजी से,
0: ओके
1: तो जब बहुत तेजी से नीचे जाता है तो मैं कहूंगा ये मेरे को पायलट की सूझबूझ थी कि मैं जहाज उड़ा रहा था,

0: और वो देख के मुझे बता रहा था कि किस तरफ जाना है।
1: अच्छा,
0: और
1: ये
0: देखिए
1: आपका उनका कोऑर्डिनेशन था
0: कोऑर्डिनेशन था। और
1: जी।
0: देखिए हम जो पायलट हैं हमें इंजन की आवाज की आदत है। उस दिन साइलेंस थी
1: अच्छा
0: तो वो बहुत डेडली साइलेंस थी। शायद दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमी होंगी जो मैं अभी याद नहीं कर पाता हूं,
1: जी
0: बट उस वक्त मुझे याद था कि काफी कुछ दिमाग से निकला था। कुछ सेकंड्स का ये जर्नी थी। हमारा जहाज बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। 18,000 से करीब जब मुझे लगा कि मैं जमीन पे जो नीचे जो 11,000 फुट पे थी
1: जी
0: वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने को पायलट से बताया कि लैंडिंग की जगह बताओ। तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे बोला दाहिनी तरफ को एक जगह थी, मैं जिस तरफ जा रहा था। तो उन्होंने जैसे ही बोला मैंने उस तरफ देखा, एक ही पॉइंट था, आगे पहाड़ था।
1: अच्छा
0: तो हमने फ्लेयर किया। और हेलीकॉप्टर में क्या होता है, आपके पास एक ही चांस होता है। जब आप फ्लेयर करते हो, आप
1: जी
0: जहाज में पीछे करते हो, नीचे से जो हवा आ रही होती है,
1: जी
0: जैसे ही आप डिस्क को टिल्ट करते हो
1: जी
0: तो आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप बच गए या नहीं बचे,
1: अच्छा, दूसरा कोई चांस
0: दूसरा
1: नहीं।
0: वो चांस नहीं। तो वो जो था आई थिंक बेस्ट ऑटो रोटेशन लैंडिंग मैंने अपनी लाइफ की थी, जिसने बचाया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो
1: जी
0: इंस्ट्रक्टर थे,
1: जी
0: जिन्होंने हमें डांट डांट के प्रिसीजन सिखाया, वो इंजन आरपीएम मेंटेन करना सिखाया और फोकस करना सिखाया, और जो ले में जो मेरे जूनियर और मेरे पियर्स और सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे आपको
1: सिचुएशन
0: आरपीएम
1: में
0: में हैंडल करना है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो पूरी ज्ञान जो था वो एक सेकंड में जो बुआ
1: एक सेकंड में
0: उसने हमारी लाइफ को बजा दिया। आज मेरी जो है ये
1: जी
0: दूसरी लाइफ है। मेरा जो को पायलट है,
1: जी
0: मेरे जो बाकी मित्र हैं जिन्होंने हमें रिकवर किया, हम
1: जी
0: दो जहाज थे, दूसरे जहाज ने आगे हमें रिकवर किया।
1: अच्छा
0: तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनलिज्म मेरे सीनियर्स, मेरे पियर्स, मेरे बाकी सारे
1: कोलिग्स आपके
0: वायुसेना
1: जी
0: के जो थे उसका एक निचोड़ था। और शायद जो अच्छी काम था या भगवान की मर्जी थी कि मुझे एक सेकंड लाइफ मिलनी है।
1: बिल्कुल
0: अभी जमीन के से बहुत दूर होते हुए भी पहाड़ के बीच में
1: जी
0: 14,200 फीट 200 फीट पे जहाज को रिकवर किया और जहाज टूट गया, लेकिन हम में से किसी को चोट भी नहीं आई। हम
1: वो
0: तीनों
1: क्रैश हो
0: निकले,
1: गया।
0: क्रैश होके टूट गया,
1: ओ
0: फिर हम तीनों बाहर निकले, हमें दूसरे जहाज ने रिकवर किया। तो शायद आई थिंक हमारी जो वायुसेना का प्रोफेशनलिज्म है कि कैसे आप सिचुएशन को डील करते हो, उसको
1: जी
0: कोई भी सीरियस, मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जिस तरीके से सिखाया, जितनी प्रैक्टिस कराई, एक एवरेज बंदे को भी एक हाईली प्रोफेशनल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की मैं जितनी तारीफ करूं कि
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर
0: आम लड़के को उसको एक प्रोफेशनल पायलट बनाया। और फिर ये जो है, मैं 1998 की बात है,
1: जी
0: उसके बाद 2012-13 तक मैं 2008-9-7-8 तक रेगुलर फ्लाइंग की।
1: अच्छा
0: तो उतनी देर उसके बावजूद चलते रहना, उसके बाद कितने
1: बिल्कुल
0: लोगों ने जो सिखाया होगा,
1: बिल्कुल
0: और लगभग मैंने 4,700 घंटे उड़ाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल सर। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही कमाल की बात है कि जो आपने इंसिडेंट बताया कि वो सर्वाइवल जो था वो लाइफ चेंजिंग रहा। तो इसलिए सर हम आपकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आप उस मौके पर किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को आपने संभाला और सारे लोग बच गए और आज आप साक्षात हमारे साथ हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये फ्लाइंग जो है वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो वो जो सर है ना कि हीर आसमानी, तो जब आसमान में उड़ते हैं तो फिर बस कुछ नजर नहीं आता, हम आसमान में होते हैं।
0: मेरे ख्याल खतरनाक तो नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो खतरनाक नहीं होता।
1: जी
0: आप उसको कैसे सिक्योर बनाते हैं, ये
1: बिल्कुल, और साथ में एंजॉय भी करते हैं,
0: एंजॉय तो करना, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में आप पूरा फोकस्ड होते हैं।
1: फोकस्ड होते हैं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर के नारंग। आप सुन रहे हैं आज का एयरफोर्स डे स्पेशल। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और ये है 102.6 एफएम नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: 102.6 देशियो नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ. आज है एयरफोर्स डे और आज के हमारे खास मेहमान एयरफोर्स डे पर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग. सर हम अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स जो है आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? भारत कहाँ है? हम अपने ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं आजकल, हम टेक में भी काफी आगे जा चुके हैं, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: देखिए ड्रोन्स भारत नहीं पूरे विश्व में
0: जी
1: वॉर फाइटिंग को भी बदल रहा है और आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ला रहा है.
0: जी
1: भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को हम एक ग्लोबल ड्रोन हब देखना चाहते हैं 2030 में. और मिलिट्री में अगर आप देखें जितनी भी वॉर्स हुई हैं, आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर हुई, अगर आर्मेनिया ने तैयारी नहीं की तो वो वॉर फटाफट लूज कर गया. तो इग्नोर नहीं कर सकते. हालांकि ड्रोन अभी मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है.
0: नहीं है, लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल तो ड्रोन से ही सब अब तो.
1: हाँ, सो ड्रोन एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने जा रहा है. और इसमें जो है भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं और इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री ड्रोन्स बना रही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बैंगलोर है वो बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका एक कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है, हमारा जो है आर्चर प्रोग्राम है
0: जी.
1: और जो स्टार्टअप्स जो हैं वो जो हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं.
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल.
1: एक स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है. तो भारत में काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. लेकिन यहां मैं कॉशन देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर में देखें जो क्रिटिकल ड्रोन इंपोर्टेड कंपोनेंट थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ यूक्रेनियन की डेथ हो गई, वो चाइनीज डीजीआई ड्रोन यूज कर रहे थे और उनके वाइस प्रीमियर ने पब्लिक में जाके एक्स पे वो उस पोस्ट को डाला. सिमिलरली अगर आप देखें पेजर और वॉकी टॉकी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो 3000 हिजबुल्ला लड़ाके इंजर्ड हुए उसकी वजह से और 40 से 50 मारे गए. क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वल्नेबल थे. तो मुझे लगता है ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आत्मनिर्भरता जो कर रहे हैं

0: तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में बने,
1: जी
0: और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जैसे घातक है, आर्चर एनजी है, या आर्चर एनजी जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस,
1: ओके
0: हमारी डीआरडीओ के लेबोरेटरी एडीई बना रही है,
1: जी
0: और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है कैट्स प्रोग्राम जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रही है,
1: ओके
0: हमारे स्टार्टअप्स बना रहे हैं लॉयटरिंग ड्रोन बना रहे हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है जो स्वॉर्म ड्रोन बना रही है, तो भारत में इनोवेशन है। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट वल्नरेबल ना हो, इंपोर्टेड इतने ना हो कि भारत की वल्नरेबिलिटी बन जाए,
1: ओके हम सेफ सिक्योर भी रहें, प्लस ये कि हमारी टेक्नोलॉजी
0: और
1: हम
0: आत्मनिर्भर बने,
1: आत्मनिर्भर बने, हमारे मेड इन
0: बने।
1: इंडिया हो सारे, वो जो
0: हाँ
1: कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम खुद बनाएं,
0: जी
1: ताकि हम हर तरह से
0: हाँ
1: टेक्निकली भी एडवांसमेंट पर जाएं, प्लस सेफ और सिक्योर भी
0: सेफ भी,
1: महसूस
0: और
1: करें।
0: हमारा जो है ना जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
1: जी
0: जो कोर डिजाइन है वो
1: कोर
0: हमारा
1: डिजाइन हमारा
0: हो,
1: अपना हो।
0: हमारे जो वल्नरेबिलिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी
1: जी
0: वजह से ये अटैक हुए वो सब भारतीय बने, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से करें, तो मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टार्टअप्स, हमारी प्राइवेट कंपनी, इवन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में
1: जी
0: बहुत प्रॉमिस है। हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नहीं करना, प्राइवेट वर्सेस लार्ज कंपनी वर्सेस स्टार्टअप नहीं करना, हम
1: बिल्कुल
0: सबको एक बनना है, एक मुट्ठी बनना है, पांच उंगलियां एक
1: मिल
0: एक
1: करके
0: उंगलियां से
1: मुट्ठी।
0: ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी,
1: जी
0: और अगर हमने स्टार्टअप्स, एकेडमियां, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ,
1: जी
0: प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एमएसएमई, ये सब इकट्ठे आ गए तो हम भारत को एक विश्व पटल पर ड्रोन
1: बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी पर स्थापित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने एक किताब भी लिखी है, इंडियाज क्वेस्ट फॉर यूएवीज एंड चैलेंजेस, तो
0: जी
1: वो इसी पर ही फोकस्ड है वो, कि
0: जी
1: यूएवीज जो हैं और ये ड्रोन्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी को, और उस पर किस तरीके की सर इसमें जो कंटेंट, जो किताब आपने लिखी।
0: देखिए, ये किताब 2014 में मैं सेंटर फॉर एपीआर स्टडीज में गया था,
1: अच्छा
0: जब मैं वहां रिसर्च करने गया तो मुझे मुझे गाइड किया गया,
1: जी
0: हमारे वहां डायरेक्टर जनरल लय मार्शल पटनी और बाकी जो टीम में बोला गया कि मुझे ड्रोन्स पे रिसर्च करनी
1: जी आपने ऑलरेडी
0: है।
1: एविएशन ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम सब पर रिसर्च की है आपने।
0: जी,
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि ये भारतीय वायुसेना ने और हमारे जो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, जिसको
1: ओके
0: आजकल सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर
1: जी
0: एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहते हैं, कैप्स, वहां पर मेरे जो लीडर्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो
1: जी
0: कलीग्स थे,
1: जी
0: उनमें मेरे एक ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर हैं, हमारे एयर मार्शल नौहार हैं, एयर मार्शल पटनी हैं, एवीएम, बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स
1: जी
0: हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, और मैं उसमें, मुझे याद है कई स्कॉलर्स होते थे जो
1: अच्छा
0: नॉर्मल पीएचडी या एमएससी कर रहे थे और कैप्स में
1: अच्छा
0: रिसर्च कर रहे होते थे, वो
1: जी
0: हमें
1: जी
0: गाइड करते थे
1: ओके
0: कि
1: जी
0: रिसर्च कैसे की जाती है।
1: आप खुद भी सर एक हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन एयरफोर्स के, और फिर रिसर्च में आप आए, तो ये भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था।
0: जी, मेरे मुझे इसमें मैं कहना चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने मुझे
1: जी
0: नज किया कि भाई आप पीएचडी कीजिए,
1: ओके
0: तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटर और गाइड रहे, उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया, जैसे
1: जी
0: उन्होंने गाइड किया, अभी भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ।
1: जी
0: फिर मैंने जेएनयू में से जब पीएचडी की तो मेरे जो प्रोफेसर थे
1: जी
0: मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे जो कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्स में बहुत कुछ सीखा, और अब जो है मैं आईडीएसएम में हूँ, एमपी आईडीएसएम, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ
1: जी
0: डिफेंस
1: जी
0: स्टडीज एंड एनालिसिस, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, एम्बेसडर चुनाव है, बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स और कलीग्स हैं।
1: जी
0: मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत ही सीखने का समय है, और मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है भारत के फ्यूचर, भारत को एरोस्पेस पावर बनाने के लिए, भारत
1: बिल्कुल
0: को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूट करे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने अपना एक कुछ कंट्रीब्यूट किया।
1: बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं भी ये भी जानना चाहूंगा अभी कि अभी जिस तरीके से आपने सब चीजें बताई, आत्मनिर्भर भारत और हम मेड इन इंडिया के थ्रू जिस तरीके से हम अपने आप चीजों को बना रहे हैं और अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं, तो 2047 में, 2047 में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं, और खास तौर से इसके साथ ये भी कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोस्पेस पावर बनाने के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो किस तरीके से आप देखते हैं।
0: देखिए, भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अभी एक
1: जी
0: डायरेक्टरेट ऑफ रिमोट बनाया जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेट है, मेहर बाबा सॉन्ग कॉम्पिटिशन है वो भी एक प्रोग्रेसिव सेट है,
1: जी
0: लेकिन एक पार्ट है जो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना एक फैसिलिटेटर है, एनेबलर है,
1: ठीक है
0: जिसकी वजह से हम काफी कुछ कर पाए हैं,
1: जी
0: लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना पार्टनर बने डिजाइन डेवलपमेंट में। देखिए क्या है, हमारी इंडियन नेवी में शिप

0: डिजाइन ब्यूरो है,
1: जी
0: तो उससे हमारा शिप बिल्डिंग का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है और
1: ठीक है
0: उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। तो अगर मुझे भारतीय वायुसेना एक एरोनॉटिक एरोस्पेस डिजाइन बोर्ड या एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एरोस्पेस रिसर्च वर्टिकल बनाएगा
1: जी
0: तो हमारा जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस रेट बहुत
1: बढ़ जाएगा,
0: बढ़
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा भारत जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने, भारतीय वायुसेना जो है
1: जी
0: आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने 2047 तक।
1: जी
0: हम आत्मनिर्भर हो एरो इंजन में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, मैंड अनमैंड फाइटर्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये जो पांच वर्टिकल हैं ये भारत को, भारतीय वायुसेना को सशक्त रियली बना सकते हैं और जो भारत एरोस्पेस डिजाइन ब्यूरो है उसकी
1: जी
0: कमियों को सक्सेसफुल होगा। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं
1: जी
0: हमें उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है उसमें थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच करें, टेक्निकल रिव्यू कीजिए, रीओरिएंटेट कीजिए, कोर्स करेक्ट कीजिए और उनको सक्सेसफुल बनाइए। ये
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: सर,
0: एक विजन है, मेरा सपना है ताकि मैं अपने फाइटर्स भारत में बने, भारत में
1: बिल्कुल
0: डिजाइन किए फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और यूएवीज उड़ाऊं और उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा करूं, उन्हें एक्सपोर्ट करूं और भारत को विश्व पटल पर डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स का एक सशक्त एक्सपोर्टर बना पाऊं और भारतीय अर्थव्यवस्था में
1: जी
0: एक कंट्रीब्यूट कर पाऊं।
1: कंट्रीब्यूशन भी हो, बिल्कुल सर। मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं आपको कुछ मैसेज यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये मैसेज है राजेश भल्ला, एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से। ये कहते हैं सर, डर से डरना नहीं है, डर तो सूझबूझ भी देता
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं
1: है।
0: इनसे मानता हूं कि वही मेरे सीनियर की बात याद आई कि भाई डर से ही
1: जी
0: आपको,
1: जी
0: डर को पॉजिटिवली यूज
1: जी
0: कीजिए,
1: वही डर आपके लिए
0: ये
1: ताकत बनता है
0: ताकत बनता है अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल
1: अगर
0: करें।
1: आप ठीक से इस्तेमाल करें। जी, और ये मैसेज का इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, दीपांशु भटिंडा से। इसके अलावा ये मैसेज है सर, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप सबको विनम्र अभिवादन। आज के मेहमान कैप्टन सर से बातचीत सुनना अच्छा लग रहा है, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई। और इसके अलावा ये है, वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, धन्यवाद। और ये है, काफी लंबा मैसेज है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। क्वीन लक्ष्मीबाई मेट हर एंड वायल सेविंग हर झांसी एट सिंध भूमि लाइक अदर्स तांतिया टोपी बट इन द नेम रॉयल ओनली दोज गेट सीन वंस ज्यूरिंग कनाडा। और आपको सर ये धन्यवाद और नमस्कार कर रहे हैं आज के इस खास दिन पर जो है इंडियन एयरफोर्स डे। और सर अब समय हमारे पास कम बचता है, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर, आपने वायु सेना मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, किस उपलक्ष्य में
0: देखिए
1: और
0: ये
1: आपकी सर्विसेज के लिए।
0: देखिए वायुसेना मेडल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया गया था। शायद
1: जी
0: इसमें जो मेरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था,
1: जी
0: हम तीनों लाइफ बची हमारी
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि वो वायुसेना मेडल मुझे नहीं मेरे इंस्ट्रक्टर्स को दे जाना चाहिए,
1: क्या बात है
0: क्योंकि
1: सर।
0: क्योंकि उन्होंने जो सिखाया ना होता,
1: जी
0: क्योंकि कई लोग हैं जो सरवाइव नहीं किए हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। और देखिए मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था, 18,000 फीट पे, जहाँ पर बहुत ही कम जो है डेंसिटी होती है। तो मुझे लगता है जो मेरे सीनियर्स या जो मेरे कलीग्स थे ले में क्या होता है कि अगर आप
1: जी
0: जूनियर पायलट भी हैं, अगर आप कैप्टन हैं,
1: जी
0: तो अगर आपका वो क्वालिफिकेशन है तो आप कैप्टन है।
1: ओके
0: तो मैं उस वक्त को पायलट, उस सॉर्टी से पहले को पायलट था, सिर्फ इस
1: अच्छा
0: सॉर्टी के लिए कैप्टन था। तो मेरे जो जूनियर थे लेकिन कैप्टन थे, तो उनसे जो सीखा, मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म को मैं देना चाहूंगा और अपने सीनियर्स को देना चाहूंगा।
1: सर, इसी बात पर मैं आगे आपसे पूछूं कि आपका जो करियर रहा इंडियन एयरफोर्स में, तो आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा?
0: देखिए वायुसेना एक एक आम स्कूल के बच्चे को एक एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाता है, उसे लीडर बनाता है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
1: जी
0: उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में डील करना सिखाता है, उन्हें अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना चाह सिखाता है, उन्हें अपने फैमिली अपने को पीछे रख के अपने देश
1: जी
0: को
1: जी
0: आगे
1: देश को
0: रखना
1: आगे
0: से
1: रखना ये
0: अपने
1: सिखाता
0: अपने
1: है।
0: सबॉर्डिनेट्स को आगे रखना चाहता है, उसे कैसे वायुसेना को अगला बनाना है वो सोचना सिखाता है। और कैसे अनफोर्सीन सिचुएशन

0: को संभालना है, तो
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि आज मैं जो बन पाया हूँ, ये भारतीय वायुसेना की वजह से कर बन
1: जी
0: पाया हूँ।
1: जी
0: एक स्कूल से निकला और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट जब
1: जी
0: उसमें आता है,
1: जी
0: कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है,
1: जी
0: वो सब
1: सर, जैसे
0: भारत के
1: आपने
0: एक
1: अपने
0: बहुत अच्छे।
1: स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइफ का किस तरीके से आपने वो मोटिवेशन, आप यूथ को, आज का जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर पायलट होगा और यूथ होगा, उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे?
0: मैं चाहूंगा कि जो भारतीय वायुसेना में जान ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है,
1: जी
0: ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाता है, आप भारत की एक्चुअली सेवा कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा कैपेबल बनाइए, आप
1: जी
0: हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाइए, आप भारत को कैपेबल बना सकते हैं, मेडिकल के, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर, पायलट, बहुत तरीकों से आप बन
1: बिल्कुल
0: सकते
1: सर,
0: हैं।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी, इतनी काम की और इतनी कीमती बातें आपने आज हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज के एयरफोर्स डे स्पेशल पर। आप हमारे आज के खास मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: और आप सुनते हैं इस वक्त की